0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में फिल्म दाग से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, ये किरण और मुस्कान का जो हसीन संगम है, ये सिर्फ चेहरे की चमक ही नहीं बल्कि हर दिल में उम्मीद और ताजगी जगाने का नाम है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म दोस्ती से ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और दोस्तों, आपसे मुलाकात का हम भी बहाना ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे मुलाकात हो, पर मिलन के साथ जुदाई भी तो है। और अब हमें भोर सुहानी कार्यक्रम से जाना होगा और अर्चना को दीजिए इजाज़त। और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

हरियाणवी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने

0: दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल है। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देश भर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक टू एफ एम रेनबो 101.9. दिस इज आरजे श्री वैष्णवी. कभी सोचा है कि हम सस्ते सामान के चक्कर में कितना पैसे बर्बाद कर देते हैं? रोज़ सस्ती चीज़ें लो, वो दो दिन में खराब हो जाते हैं और फिर से नए खरीद लो. इट जस्ट कीप रोटेटिंग, राइट? इससे बढ़िया है ना कि एक बार थोड़ा सा अच्छा और महंगा सामान ले लो जो लंबे समय तक चले. आज का सवाल यह है कि वो कौन सी थोड़ी सी महंगी चीज़ है जो पहले तो फजूल खर्ची लगी थी, राइट? सो लेकिन अब लगता है कि भाई पैसा वसूल हो गया और लाइफ सेट हो गई. सुनो सुनो, बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो हर घर की कहानी है, एक अच्छा वाला मोटा गड्ढा या मैट्रेस. शुरू में लगता है कि यार बेड पर इतना सारा पैसा क्यों खर्च करना है भाई, ज़मीन पर या मैट्रेस पतले मैट्रेस पर भी तो नींद आराम से आ जाती है ना. लेकिन जब सुबह उठ के पूरी कमर दर्द करती है तब समझ आता है कि असली सुकून क्या होता है. जिसने भी एक सॉलिड बढ़िया क्वालिटी का मैट्रेस ले लिया उसकी लाइफ बदल गई है, क्योंकि नींद अच्छी तो पूरा दिन अच्छा. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9 फॉर मोर इंफोटेनमेंट.

You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. अब बात करते हैं किचन के राजा की, एक बढ़िया नॉनस्टिक पैन या एयर फ्रायर। शुरू में लगता है कि यार ये छोटे मोटे बर्तन या इलेक्ट्रिक मशीन्स हजारों रुपए के आते हैं, ये तो बस दुकानदार का जो बेवकूफ बनाने का और पैसे वेस्ट करने का तरीका लगता था। हम तो अपनी पुरानी लोहे की कढ़ाई में ही काम चला लेंगे जिसमें दाल और काना चिपकता रहता है, पर सच मानो जब आप बिना तेल के क्रिस्पी चीज़ें बनाते हो और बर्तन साफ़ करना बिल्कुल आसान हो जाता है, तब दिल खुश हो जाता है। ये छोटे मोटे मॉडर्न गैजेट्स किचन की लाइफ को इतना आसान बना देते हैं कि पछतावा बिल्कुल नहीं होता। सुबह की चाय हो या शाम का स्नैक, ये चीज़ें आपका आधा काम तो वैसे ही ख़त्म कर देती है। क्या आपके पास भी ऐसी कोई किचन मशीन है जो अब आपकी जान बन चुकी है? लोगों को लगता है कि फजूल खर्चे हैं, पर असली वैल्यू वही समझते हैं जो रोज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि एक बार पैसे लगाओ और सालों तक काम आराम से बैठकर खाना खाओ, यही तो मॉडर्न लाइफस्टाइल का मज़ा है ना। सो बताओ जल्दी, आपका कौन सा किचन टूल आपका सबसे बड़ा हीरो बना हुआ है आज के दिन? सुनते रहो अपनी पसंदीदा आवाज़ सिर्फ यहीं पर।

जान है, एक सॉलिड नॉइस कैंसलिंग हेडफोन जब पहली बार दुकान पे प्राइस टैग देखते हैं ना, तो सच में दिमाग घूम जाता है कि इतना महंगा कौन देता है भाई साहब। लगता है कि गाने ही तो सुनने हैं, सड़क पर सस्ते वाले ईयरफोन्स भी से भी काम चल रहा है ना, पर जब आप ट्रेन, बस या शोर शराबे वाले ऑफिस में बैठकर उसको यूज़ करना है तो मन बहती हो, तब असली मैजिक दिखता है। बाहर की सारी दुनिया की आवाज़ एक सेकंड में गायब हो जाती है और बस आप और आपका म्यूजिक बजता है। वो शांति और फोकस अनमोल होता है और सच में लगता है कि पैसा एकदम वसूल हो गया दोस्तों। चाहे कितना भी बॉस चिल्ला रहा हो या सड़क पे गाड़ियों का हॉर्न बज रहा हो, आप अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हो। पहले लगता था ना कि महंगा हेडफोन्स कौन लेता है, पर अब लगता है कि ये तो ज़रूरत है। क्या आपने भी कभी अपने शांति के लिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ पर पैसा खर्च किया है? हम लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाना, बने रहना।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. In the Worth Every Penny Splurge series, आखिरी बात करते हैं घर की सफाई और स्मार्ट गैजेट्स की. आजकल ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, रोबो वैक्यूम क्लीनर जैसे गैजेट्स ने घर के काम को काफ़ी ईजी बना दिया है. पहले लगता है कि इतना पैसे क्यों खर्च करें, ये काम तो हम खुद कर सकते हैं ना. बट आफ्टर लॉन्ग डे एट वर्क, जब टाइम और एनर्जी दोनों कम हो, जब तब दीज गैजेट्स बिकम रियली ब्लेसिंग. दे सेव आर टाइम, एनर्जी एंड मेक लाइफ मोर कम्फर्टेबल. वही टाइम हम फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं या सिंपली रिलैक्स कर सकते हैं. सो स्मार्ट गैजेट्स सिर्फ लग्जरी नहीं है, समटाइम्स दे आर अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इन अ बेटर, इजियर लाइफ. सो स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक.

Tuning into FM Rainbow 101.9, this is RJ Sri Vaishnavi. So, चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो हमारे सेहत और काम दोनों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. हम सब दिन भर कंप्यूटर या लैपटॉप के आगे या फिर फ़ोन पर झुक कर बैठते हैं घंटों तक, और शुरू में हम कोई भी पुरानी प्लास्टिक या सस्ती वुडन चेयर पर काम चला लेता है आराम से. लेकिन जब पेट में और पूरी पीठ में दर्द शुरू होते हैं, तब समझ आता है कि गलती कहाँ हो रही है. एक अच्छी ऑफिस चेयर लेना शुरू में बहुत महंगा सौदा लगता है, जैसे कि फजूल के पैसे दे रहे हैं. लगता है कि बैठने के लिए ही तो है, इसके लिए इतना सारे हज़ारों रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत है भाई. जिसने एक बार ऐसे कंफर्टेबल चेयर पर बैठकर काम कर लिया, उसको दूसरा कुछ नहीं सुहाता. वो आपकी स्पाइन को पूरा सपोर्ट देती है, पोस्चर ठीक रखती है और थकावट बिल्कुल नहीं महसूस होने देते हैं. पहले जो चीज़ फजूल खर्ची लगती है, वही बाद में डॉक्टर के बिल से बचने वाले सबसे बड़ी सावधानी बन जाती है. तो बताओ दोस्तों, क्या आपने भी अपने हेल्थ के लिए, अपने पोषण के लिए कोई ऐसी महंगी चेयर या डेस्क ली है? सुनते रहो रेडियो और भेजते रहो अपने मैसेजेस. हम मिलते हैं एक छोटे से गाने के बाद.

0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे

0: अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
1: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 घायल हो गए। आज तड़के पुणे बंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रक से जा टकराई। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Lok Sabha has been adjourned till 2 p.m. following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET issue. When the Lok Sabha assembled at 11 a.m., the Lok Sabha speaker tried to take up the question hour, but the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protests. The opposition members were demanding a statement from Union Home Minister Amit Shah in this regard. Mr. Birla said Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju yesterday made it clear that Union Home Minister Amit Shah is ready to respond to the issues concerning students. He appealed to opposition members to cooperate in the smooth functioning of the House. The Speaker said, question hour is the most important time as it ensures government

0: Rainbow 101.9.
1: You are listening to Akashvani FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. As I was talking about digital entrepreneurship, bahut sari moms or homemakers or someone who couldn't complete their studies back then ye soch kar dar jati hai ki are humne to zyada padhai nahi ki hum computer kaise chalayenge. अरे नहीं जी, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है. आजकल AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऐसे आसन ऐप्स आ गए हैं जो आपके लिए आधा काम खुद ही कर देती है. अगर आपको बस थोड़ी बहुत स्मार्टफोन चलाना आती है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना या थोड़ा हिडन टैलेंट्स को पहचानकर डिजिटल वर्ल्ड में पहला कदम आराम से रख सकती है. इंटरनेट पर काम करने के लिए बड़े बड़े डिग्रीज नहीं चाहिए, बल्कि कुछ नया सीखने की छोटी सी इच्छा और ज़रूरत होती है. सभी लोग ज़ीरो से ही शुरू करते हैं और आप भी अपनी इस नई शुरुआत को एक खेल की तरह एंजॉय कर सकती है. ये जर्नी बिल्कुल आसान है और आप धीरे धीरे सब कुछ खुद ही सीख जाएंगे. सुनिए हमारी बात, आप में वो हर टैलेंट है जो आपको आगे ले सकता है. स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So, चलिए अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन और ब्लॉगिंग के बारे में. सोचिए, आपको कुकिंग का शौक है या प्लांट्स केयर करने का शौक है या फिर घर को साफ सुथरा और सुंदर सजाने की नए नए ट्रिक्स पता है. बस यही आपका पहला टॉपिक बन सकता है. कंटेंट क्रिएशन का मतलब ही होता है अपने अनुभव और आइडियाज़ को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करने का. और सबसे मज़ेदार बात यह है कि AI आपको स्पेलिंग ठीक करने में और कैची टाइटल्स लिखने में और पूरे आर्टिकल डिज़ाइन करने में आपकी पूरा हेल्प करता है. आपको बस अपना डेली का एक्सपीरियंस और प्यारी सी बातें दुनिया के साथ शेयर करनी होती है और बाकी का सारा तेज का काम AI संभाल लेता है. ये एक बेहतरीन तरीका है अपनी पहचान बनाने का. आई जस्ट टोल्ड यू नथिंग बट अबाउट समथिंग यू वॉच एवरी डे इन योर सोशल मीडिया एंड ट्राई टू एनैक्ट समटाइम्स और फ्यू वीडियोज़ वुड ओपन ए डिफरेंट गेट ऑफ पर्स्पेक्टिव. सो माई डियर लिसनर्स, फ्रॉम नाउ इफ यू हैव एनी hidden talent which would actually help people and something that would be worth of, जब भी आप सच वीडियोज़ देखते हैं उस नज़र से देख लीजिए जिससे वो कैसे ये शूट कर पा रहे, ये किस तरह का कॉन्टेंट बना रहे या लोग कैसे एडिट कर पा रहे. येस, सो

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. So, I was talking about digital entrepreneurship. So, आपने अक्सर देखा होगा कि हम अपनी किसी पड़ोसी आंटी या दोस्त को बोलते हैं कि अरे ये मिक्सर ग्राइंडर या ये फेस क्रीम बहुत अच्छा है, तुम भी ट्राई कर लो। बस ऑनलाइन की दुनिया में इस सिंपल चीज़ को अफिलिएट मार्केट कहते हैं। आप जिस प्रोडक्ट को दिल से पसंद करते हैं और उसे यूज़ करते हैं, उसका एक स्पेशल लिंक अपने सोशल मीडिया या ग्रुप पर शेयर करते हैं। जब कोई उस लिंक पर क्लिक करके खरीद करते हैं तो कंपनी आपको उसका छोटा सा कमीशन देती है, बिना कोई नया प्रोडक्ट बनाए, सिर्फ अपनी हॉनेस्ट एडवाइस और सजेशंस देने के। ये एक बेहद शानदार और आसान तरीका है जिससे कोई भी घर बैठे बैठे आराम से कर सकता है। आपको बस अपने दोस्तों के साथ अच्छे प्रोडक्ट्स शेयर करना है और अर्निंग शुरू हो जाता है। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च ऑन अफिलिएट मार्केटिंग बिफोर गेटिंग इन टू इट एंड डू इट इन द राइट वे। बोलिए इससे आसान और क्या हो सकता है दोस्तों। So stay tuned to FM Rainbow 101.9 for more information.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर है, आप टाइपिंग अच्छे कर लेते हैं, या किसी का मैसेज या ईमेल बहुत पोलाइटली और अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं, ये सब आपके छोटे छोटे स्किल्स हैं जो किसी के लिए बहुत कीमती हो सकती है। बहुत सारी छोटी कंपनीज और ऑनलाइन दुकानें ऐसे होते हैं जिन्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो उनके मैसेजेस का रिप्लाई कर सके।

एंट्री कर सके या सोशल मीडिया मैनेज कर सके, आप घर बैठे बैठे अपने फ्री टाइम में इन सर्विसेज को दे सके। और अगर कहीं पर भी आप अटके तो ऐसे पूछकर ईमेल या प्रपोजल ड्राफ्ट करवा सकते हैं, जैसे आपके पास कोई पर्सनल सेक्रेटरी बैठा हो। ये आपका अंदर का कॉन्फिडेंस जो है उसको आसमान तक ले जाएगा और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। खुद पर विश्वास रखिए, आप सब कुछ कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

0: 101.9.
1: You're back to your favorite station FM Rainbow 101.9 with me, RJ Sri Vaishnavi. So, बहुत बार मॉम्स या होम मेकर्स ये पुरानी बात सोचकर रुक जाते हैं कि हमसे नहीं होगा, हमें टेक्नोलॉजी तो तोड़ ही ना पता है, हम टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा पता ही नहीं है। अरे सुनिए तो, ये बिल्कुल नेचुरल नहीं है कि जब हम कोई नया रास्ता पकड़ते हैं तो थोड़ा डर लगता है। पर याद रखिए, हर बड़ा एक्सपर्ट कभी ना कभी एक बिगिनर ही था, और उसने भी ज़ीरो से शुरू किया था। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं सीख लेना है, बस रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। अपने अंदर का उस डर को पीछे छोड़ दो और इस नई डिजिटल दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलो, क्योंकि आप किसी से भी पीछे नहीं है। आपकी मेहनत और लगन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। इसीलिए खुद पर पूरा भरोसा रख लीजिए। हम सब आपके साथ हैं इस सफ़र में। सो स्टे ट्यून्ड टू FM रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: वेलकम बैक टू एफ एम रेनबो 101.9. दिस इज आर जे श्री वैष्णवी. तो दोस्तों, बात बिल्कुल साफ और क्लियर है. डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कोई रॉकेट साइंस नहीं है. ये बस आपकी डेली लाइफ के हुनर और थोड़ी सी स्मार्ट टेक्नोलॉजी का एक प्यारा सा संगम है. आज ही सोचिए आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, चाहे वो कुकिंग हो, राइटिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, या फिर अपनी प्यारी बातें शेयर करनी हो, और बस उसी पर अपना छोटा सा डिजिटल सफ़र शुरू कर दीजिए. हमारे साथ यानी एफएम रेनबो के साथ ऐसे बने रहिए, क्योंकि नए सपने देखने और उन्हें पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती है. सो कैच यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट सेगमेंट. एज अ टाइम इन द स्टूडियो क्लॉक इज 12:58. वी आर ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द शो. नमस्ते, हेलो, आदाब, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सेगमेंट हेलो रेनबो, वेर आई कैन कनेक्ट विथ यू ऑल. सो स्टे ट्यून्ड टू एफएम रेनबो 101.9. एन इंटरेस्टिंग टॉपिक इज कमिंग ऑन योर वे. वी विल डिस्कस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ things about that.

माइक पर सिलसिले के तहत 14 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामयिन सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नैरन में।

रिमझिम हैदराबाद प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे तेलुगु में प्रवलिका। बाय बाय प्रवलिका। अब हम आगाज करते हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग का इस वक्त रात के 9:22 में। आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर।

ज्यादा खाना भी कई अमराज को जन्म देता है। बीमारियों से बचने के लिए साफ सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। घर साफ रखें, गंदगी दूर करें, खुले मोरियों रास्तों में कचरा पड़े रहना, नालियों डब्बों में कई दिनों तक पानी जमा रहना भी न सिर्फ मच्छरों की अफजाइश को जन्म देता है बल्कि दूसरी बीमारियों मलेरिया, फ्लू, चिकनगुनिया और दिमागी बुखार जैसी बीमारियां और टाइफाइड, हैजा, इरकान वगैरह जैसी बीमारियां फैलती हैं। बीमारियों की असल वजह तो गंदगी है, साफ सफाई ना होना ही बड़े मरض है। बीमारियां ना सिर्फ हवा, पानी, गिजा से फैलती हैं बल्कि एक दूसरे से ताल्लुक़ पैदा करना, बीमार शख्स से खुरबत रखना, एक दूसरे का झूठा पीना और बीमार लोगों का ज़्यादा साथ रखना एक वजह है। ख़ास तौर से सर्दी, फ्लू, टीबी वगैरह एक आदमी दूसरे आदमी तक जल्द बीमारी पहुंचाता है। बीमारियों तो कई किस्म की है लेकिन आम तौर पर तीन किस्म की बीमारियों को अहम माना जाता है। इन्फेक्शन डिसीज़, जो हवा, पानी, गिजा के अलावा एक शख्स से दूसरे शख्स को मुतासिर करती हैं, जिसमें मलेरिया, हैजा, टीबी वगैरह, सर्दी, खांसी, प्लेग, मम्स, पेचिश वगैरह है। इन बीमारियों की वजह बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगी वगैरह हैं। इन बीमारियों में जल्दी बीमारियां, आँखों की बीमारियां भी वजूद में आती हैं। कॉन्जेनिटल डिसीज, ये बीमारियां बॉडी डिसऑर्डर, जिस्मानी या मेटाबॉलिज्म की खराबी, क्रोमोसोम्स का नॉर्मल नहीं होना इन बीमारियों से ताल्लुक़ रखता है। दिमागी बीमारियों, खून का इखराज, खून की कमी, जोड़ों का दर्द, तिल्ली का बढ़ जाना, जिगर का बढ़ जाना, दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाना, जहाँ तक इन बीमारियों का ताल्लुक़ है वो ख़ानदानी भी इसका कुछ ताल्लुक़ होता है। नस्ल दर नस्ल हेरिडिटी के तौर पर भी ये बीमारियाँ आती हैं। इनमें दिल की बीमारी, शुगर, ज़ियाबत, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, बवासीर वगैरह भी शामिल है। 30 या 40 साल के बाद से असरअंदाज ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं और कई बीमारियां हमें तोहफे के तौर पर हासिल होती हैं। ख़तरनाक बीमारियां, ये बीमारियां हमारी ख़राब आदतों और ख़राब ग़िज़ाओं से हम तक पहुंचती हैं। ये एड्स भी ये हमारी ख़राब आदतों का सबब है। इसके वायरस इंसान के जिस्मानी मदाफ़ियती निज़ाम को ख़त्म कर देते हैं, जिससे वो हर किस्म की बीमारी में मुब्तला हो जाता है और मर जाता है। कैंसर, कैंसर की बीमारी में इंसान के खलिए ख़राब हो जाते हैं, साथ साथ टिश्यू भी ख़राब होने लगते हैं। कैंसर कई किस्म का होता है, जिल का कैंसर, जिस्म के अंदर किसी भी अज़ा का कैंसर, खून का कैंसर। यह खून का कैंसर इंतहाई ख़तरनाक होता है, इसको लिकोमिया भी कहा जाता है। इब्तदाई मरहल में इसका इलाज मुमकिन हो सकता है। इसके अलावा गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, आंतों का कैंसर, छाती का कैंसर वगैरह हैं। इसकी अहम वजह तंबाकू का इस्तेमाल समझा जाता है। तंबाकू, शराब के अलावा बाज़ ग़िज़ाओं में केमिकल्स वगैरह की मकदार, आलूदा ग़िज़ाएँ भी इसकी ज़िम्मेदार है। बाज़ बीमारियों कीड़ों, मक्खी, मच्छर, चूहे, झींगर वगैरह से भी पैदा होती हैं, जो न सिर्फ बीमारियां पैदा करते हैं बल्कि इसको एक शख्स से दूसरे शख्स, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं। पानी से आने वाली बीमारियां, टाइफाइड, हैजा, पेचिश, गिजा से आने वाली बीमारियां, जिस्मानी ताल्लुकात से आने वाली बीमारियां, सिफिलिस, गनोरिया, एड्स, खुजली, रिंग वर्म वगैरह हैं, जो एक ख़तरनाक सूरत इख्तियार करती है। इन तमाम के अलावा कुछ मौसमी बीमारियां भी होती हैं। सर्दियों में, गर्मियों में और बारिश में ये बीमारियां एक वबा की शक्ल में उबल पड़ते हैं। बीमारियों में ख़ास तौर से वबाई बीमारियां बहुत अहम हैं, जो जानलेवा साबित होते हैं। जदीद दौर में मुख्तलिफ किस्म के वायरस एक वबा बनकर फैलते हैं रहते हैं। इस दौर में हालिया कोरोना वायरस का जोर चल रहा है, बैरून मुल्क में भी ये फैलने लगे हैं, तकरीबन एक जगह से दूसरी जगह फैल रहे हैं। इस मर्ज में मरीज को पहले निमोनिया हो जाता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ और गर्दन पर भी असर, इसका असर होता है।
ایک خیال اور بھی ہے کہ ایک تحقیق کے مطابق جانوروں سے منتقل

होकर इंसानों में ये बीमारी आई है। ये मर्ज ज़्यादातर सांप, चूहे, चमगादड़, लोमड़ी, मगरमच्छ, मकोड़े वगैरह से फैला है, एक ख्याल है। लेकिन इसके और भी वजूहत हो सकते हैं कि तहकीकात जारी हैं। आदमी अचानक इसमें बीमारी का शिकार हो जाता है। अब ये बीमारी ज़्यादातर मुतासर शख्स से एक दूसरे को फैल रही है। ये एक मुतादी बीमारी है। मुतासरा शख्स से हाथ मिलाने, एक दूसरे का इस्तेमाल शुदा रूमाल तवलिए का इस्तेमाल करना, एक जगह खाना, झूठा खाना, छींकने वाले, जुकाम नजरे रखने वाले से दूरी इख्तियार करना ज़रूरी है। ज़्यादा रूमाल या कपड़ा मास्क का इस्तेमाल करें ताकि मुंह नाक से निकलकर फैलने वाले जरासीम से महफूज रहे। गोश्त का इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा देर तक जमे हुए गोश्त और खुले रखी हुई गिजाएँ इस्तेमाल ना करें। तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल ना करें। हमेशा हाथ धोना, मुंह धोना, यहाँ तक कि वजू करते रहने से भी हिफाजत होती रहती। किसी मुतासरा शख्स जिसको फ्लू वगैरह है उससे दूर रहें, उसकी नाक या मुंह को ना छुएं। टिश्यू पेपर, नेपकिन खुले मुकामात पर ना डालें। साफ़ सफाई का ख्याल रखें। ज़्यादा वजू और मुंह धोना का इंतज़ाम करते रहें और हराम और हलाल का ज़्यादा ख्याल रखें। और डॉक्टर जिस चीज़ से मना फरमाए वो ना खाएं, और जो हलाल है वो भी वही काम करें, वही खाएं। और इसके अलावा ज़्यादा मजमे में जहाँ ज़्यादा तादाद में लोग हों उन मुखा से भी गरेज करें। गैर ज़रूरी बाहर फिरते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मुलाकातें करने के बजाय घर में रहने को तरजीह दें। खाने में सफाई का ख्याल रखें, पानी साफ पिएं। बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे जिस्म में कुदरत ने कुछ सलाहियतें दी हैं। इसके अलावा एंटीजन एंटीबॉडीज़ की कारकर्दगी का भी ख्याल रखें। सबसे ज़रूरी है कि हम मुतवाजिन और साफ़ सुथरी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। सिर्फ गोश्त ही नहीं बल्कि तरकारियों, मेवों और खुश्क मेवाजात का ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक ही किस्म की ग़िज़ा ना इस्तेमाल करें। अगर हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, चर्बी, मिनरल्स सब मुनासिब मकदार में हासिल होना ज़रूरी है तो इसको इस्तेमाल करें। इसके लिए मुतवाजिन ग़िज़ा का इंतखाब करें और ग़िज़ाएँ बदल बदल कर इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमारे जिस्म में विटामिन की मकदार ए, बी, सी, डी, ई, के ये सब मुतवाजिन हालत में रहें। विटामिन बी और सी पर ज़्यादा तवज्जो दें। मिनरल्स में लोहा, आयोडीन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह की मकदार का ख्याल रखें। ज़्यादा चिकनाई खाने से एहतियात करें, तभी तो हम जिस्मानी तौर पर इम्यूनिज्म कायम रख सकते हैं, बीमारियों से मुकाबला कर सकते हैं। ज़्यादातर मुखवी ग़िज़ाएँ खाएँ, ना कि ज़्यादा खाएँ, बल्कि ग़िज़ा इतनी ही मकदार में खाएँ जिसको आपका मैदा हज़म कर सकते। बीमारियां बाज़ औक़ात विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और चर्बी की ज़्यादती से भी आती हैं, बाज़ औक़ात इन चीज़ों की कमी से भी आती है। इसलिए हम नॉर्मल तौर पर ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें तो हाँ, बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। इन तमाम बातों के अलावा हम अपने अख़लाक़ और आमाल पर भी ज़्यादा तवज्जो रखें। गैर ज़रूरी नाजायज़ काम ना करें जिससे बाद में टेंशन पैदा होता है। और कुछ बीमारियां नफ्सियाती होती हैं जिसका ताल्लुक इंसानी फितरत उसके किरदार से होता है। कई लोग मुख्तलिफ नफ्सियाती बीमारियों में मुब्तला होकर बीमार पड़ जाते हैं। शक, शुबा, खौफ, ऊंचाई से खौफ, दुनिया से लाताल्लुकी, बेजारगी, एकाएक मुश्तइल हो जाना, जज्बात में आ जाना, एहसास कमतरी का हो जाना, सबसे बेताल्लुक होना, दूसरों को अपना दुश्मन समझना, शैतानी असरात महसूस करना, अनजान बेखौफ हो जाना, किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेना, खुद को बड़ा महसूस करना, दूसरों की कदर ना करना, हिरस हवस में मुब्तला होना, खुदगर्जी में मुब्तला होना, मतलब परस्त बन जाना, ऐसी नफ्सियाती बीमारियां भी इंसान को बीमार कर देती हैं। यूं तो मोहलिक बीमारियों के तीन स्टेज हैं। इब्तदाई स्टेज में ही इसका इलाज करवाएं तो अच्छा रहता है, सेहत अच्छी रहती है। आज के जदीद दौर में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि हर बीमारी के लिए टेस्ट ज़रूरी हो गया है, जिससे हमको बीमारी और इसकी हालत का अंदाज़ा होता है। खून का टेस्ट कई किस्म का होता है, हर अलग अलग बीमारी की पहचान जाहिर कर देता है। पेशाब का टेस्ट भी हमको बताता है कि क्या चीज़
क्या

0: मादे ज़्यादा खारिज हो रहे हैं क्या नहीं है। इसके अलावा थर्मामीटर, ब्लड प्रेशर का आला, शुगर का आला, ईसीजी, एक्सरे, बायोप्सी, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, पीआईईटी स्कैन, एमआरआई टेस्ट, इंडोस्कोपी, कोलोनस्कोपी, रगों की कसाफत, हड्डियों की ताकत के टेस्ट, आँखों के लिए ख़ास आला होता है और कई किस्म की बीमारियों के अलग आलात के ज़रिए टेस्ट किया जाता है, जिससे फौरी हमें बीमारी का पता चल जाता है कि इसके लिए सही दवा तजवीज़ की जा सकती है। इसके अलावा आज के दौर में खून के जेनेन का टेस्ट के ज़रिए भी ख़ानदानी बीमारी, हेरिडिटी, तौलीदी मादे का टेस्ट के ज़रिए भी आने वाली बीमारियों का पता चलता है। थूक, बलगम, पसीने के टेस्ट के ज़रिए भी टीबी, कोरोना, दीगर बीमारियों का पता चलाया जाता है। बाज़ अहम टेस्ट भी दिल की बीमारी के लिए कोलेस्ट्रॉल, खून का गाढ़ा होना, गुर्दों के लिए क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड का भी टेस्ट ज़रूरी होता है। इंसान जब पैदा होता है तो साथ अपने बहुत सी बीमारियां ले आता है। ज़्यादातर ये बीमारियां मौरूसी भी होते हैं, बाप, माँ, दादा, दादी या नाना, नानी की किसी तरह भी ख़ानदान की तरफ से आती हैं। इन बीमारियों को हेरिडिटी भी कहा जाता है, लेकिन इन बीमारियों के साथ इसके पास दिफाई निज़ाम भी होता है। इंसान ही नहीं बल्कि हर जानदार को कुदरत से बीमारियों की मदाफियत का निज़ाम रखा गया है, जो खुद ब खुद बीमार होने के बाद सेहत भी ठीक कर देता है। इस तरह दूसरे जानदारों को इलाज की ज़रूरत नहीं होती। जंगल के जानवर उमर तिब्बी उम्र को पहुंचकर मरते हैं, बमुकाबला हम जो पालतू जानवर रखते हैं वो कुछ अर्से के बाद बीमार पड़ जाते हैं, इनका इलाज करने के बावजूद भी वो बच नहीं पाते। इस तरह हर जानदार को जिस मदाफियती निज़ाम के ज़रिए रिपेयरिंग चलती रहती है, इसी तरह हमारे जिस्म में कुछ चीज़ें बिगड़ती हैं, कुछ बनती हैं और बाहर की तरह बीमारियों से मुकाबला करने की सलाहियत भी रखती हैं। कुछ चीज़ें बिगड़ जाए तो तबीयत सुस्त हो जाती है, सुधर जाती है, सुधर जाए तो बहाल हो जाती है। हम अपनी बीमारियों के लिए खुद जिम्मेदार हैं। साफ़ सफाई न रखना, बीमार लोगों से गुरबत रखना, रवाबित में आना, पान, सिगरेट, शराब, गुटखा खाना, हद से ज़्यादा मेदार में एक ही किस्म की गिज़ा का खाना, बेवक्त सोना, बीमार होने पर ज़्यादातर एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करना, जिससे बीमारी तो जाती है साथ साथ मदाफ़ियती निज़ाम और जिस्म के अज़ाए रईसा पर बार पड़ता है। ज़्यादातर बीमारियां हमारे तर्ज ज़िंदगी सही ढंग ना रखने की वजह से आती हैं। ख़राब आदतें और ऐश पसंदी, जंक फूड, मुरगन ग़िज़ाएँ भी बीमार करती हैं। अक्सर अवकात ज़्यादातर बीमारियां नफ्सियाती होती हैं, हमारी सोच तमाम जिस्म पर असरअंदाज होती है। एकाएक हैबत खाना, गुस्से में रहना, हसद व जलन की आग में जलना, शक व शुबहात में पड़ जाना, एहसास से कमतरी का शिकार होना, मायूस हो जाना और ज़िंदगी के कई मसाइल हैं जिसको हम इत्मीनान कल्ब और समझदारी से हल करना ज़रूरी है, वरना ये मसाइल फ़िक्र व सोच तमाम जिस्म को बीमार कर देती है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक आइडियल मेहनती ईमान ज़िंदगी गुजारें, दूसरों के साथ खुशगवार ताल्लुकात रखें तो जिस्मानी सेहत पर इसका असर बहुत ही कम हो जाता है।
1: बीमारियों से हिफाजत, इस उन्वान पर तकरीर अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद फारूक मोहिद्दीन से। बेदारी कायनात सिलसिले के तहत ये तकरीर आपने सुनी।

0: हैदराबाद का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। हैदराबाद तो बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा, यहाँ पे फ्यूचर सिटी भी बनने वाला है। यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगा बन रही, कंपनियाँ खोल रही, लोगों की सहूलत के वास्ते रोडा, फ्लाईओवरा और ब्रिजा बनाते जा रहे। जिधर देखो उधर महंगे महंगे गाड़ियाँ भागते हुए दिख रही। तरक्की तो बहुत हो रही मगर एक्सीडेंटा भी हो रहे। ट्रैफिक पुलिस और लोगों की भलाई के वास्ते काम करने वाले तंजीमा अपनी पब्लिक को ट्रैफिक रूल्स बता बता के थक जा रहे हैं। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, एक्सीडेंटों से बचो बोल रहे हैं, मगर अपने हैदराबादियाँ हैं कि सुन रहे नहीं। चालाना मारे तो भी पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे को बस इतना ही बोलना है, रोडों पे गाड़ियाँ नको भगाओ, सीट बेल्ट और हेलमेट पहन के गाड़ियाँ चलाओ। अपन जब घर से निकलते तो अपने घर वाले अपने घर को आने का इंतज़ार करते रहते। अगर बगैर हेलमेट के और बगैर सीट बेल्ट के अगर गाड़ियाँ चलाएंगे तो घर को तो बाद में, पहले उस्मानिया नहीं तो गांधी को पहुँच जाते। रोड सेफ्टी अपने साथ साथ दूसरे लोगों के वास्ते भी बहुत ज़रूरी है, तो रोड सेफ्टी के रूल्स को फॉलो करो, घर को सही सलामत पहुँचो, हेलमेट और सीट बेल्ट पहन के गाड़ियाँ चलाओ।
1: सामाइन आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नए रंग 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए अब हम आपको बताते हैं आज एक यानी खुसूसी मालूमात हम आपको देते हैं वर्ल्ड स्टील पैन डे पर। वर्ल्ड यानी स्टील पैन म्यूजिक के एक मुनफरिद साज का नाम है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे म्यूजिक की दुनिया के एक ऐसे मुनफरद साज की जिसकी आवाज़ में खुशी, सकाफत, तारीख और तख्लीकी सलाहियतों की खूबसूरत यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरती बसी हुई है। आज यानी 11 अगस्त को वर्ल्ड स्टील पैन डे मनाया जाता है। सामाइन, म्यूजिक इंसानी जज्बात की वो ज़ुबान है जिसे समझने के लिए किसी तर्जुमे की ज़रूरत नहीं होती। खुशी हो या गम, जश्न हो या यादें, म्यूज़िक दिल की कैफियत को आवाज़ दे देती है। दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपनी अपनी सकाफत के मुताबिक म्यूज़िक के मुनफरिद साज तख्लीक किए जाते हैं और इन्हीं में एक दिलचस्प और मुनफरिद साज है स्टील पैन। स्टील पैन एक ऐसा म्यूजिकी का साज है जो धातु से तैयार किया जाता है और इसे हाथ या मखसूस छड़ियों की मदद से बजाया जाता है। इसकी आवाज़ नहायत दिलकश, रोशन और खुशगवार होती है। स्टील पैन की ख़ास बात यह है कि इसे आमतौर पर धाती ड्रम या स्टील के बैरल से तैयार किया जाता है। धात की सतह पर मुख्तलिफ हिस्सों को मखसूस अंदाज में ढालकर मुख्तलिफ सुरों के लिए तैयार किया जाता है। जब इन हिस्सों को बजाया जाता है तो एक खूबसूरत और मुनफरिद धुन पैदा होती है। यह साज सिर्फ म्यूजिक का एक आला नहीं बल्कि एक सकाफती शिनाख्त बन चुका है। यह साज 20वीं सदी में ईजाद किया गया और ये आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता हुआ सब जगह यानी सब जगह बजाया जाने लगा। स्टील पैन की कहानी हमें यह बताती है कि तख्लीकी सलाहियत किसी ख़ास चीज़ की मोहताज नहीं होती। इंसान अगर महदूद वसाइल में भी कुछ नया तख्लीक करने का जज्बा रखता हो तो वो एक आम सी चीज़ को भी गैर मामूली बना सकता है। एक धाति जैसे म्यूजिक का एक ऐसा साज तख्लीक करना जो बाद में आलमी सतह पर पहुंचाया जाए, वाकई इंसानी तख्लीकी सलाहियत की शानदार मिसाल है। स्टील पैन की म्यूजिक कई नगमों में इस्तेमाल की जाती है। आप सुनिए कि पुराने नगमों में, पुराने जो फिल्में थी उनमें स्टील पैन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और उनकी यानी उसकी म्यूजिक एक अलग ही अंदाज में सुनाई देती थी।

सिर्फ स्टील पैन यानी बिल्कुल अलग से स्टील पैन नहीं बल्कि स्टील पैन भी साथ होता था दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के। अभी गीत आप सुनिए जो हमने लिया है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से, उसमें स्टील पैन का इस्तेमाल किया गया है।

प्रोग्राम डॉक्टर माइक पर सिलसिले के तहत 14 अगस्त 2026 को रात 9:30 बजे आप सुन सकते हैं डॉक्टर आयशा सलमा गायनेकोलॉजिस्ट से लिया गया इंटरव्यू पोस्ट डिलीवरी प्रिकॉशंस पर। सामईन सुनना न भूलें डॉक्टर साहिबा के जरीन मशवरे सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी 101.9 FM रेनबो पर उर्दू प्रोग्राम नहरन में। आप सुन रहे हैं 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। चलिए हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखते हैं और अब हम आपको सुनाते हैं गीत सुरीले गाता जा गीत। तो आपने सुने हैं अब तक कई गीत, इस सिलसिले को हम जारी रखते हैं और एक कहानी के साथ ये गीतों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं गीत सुरीले गाता जा के तहत। तो चलिए हमारी आज की एक छोटी सी कहानी का मौजू है कि यानी टेकिंग केयर ऑफ एल्डरली पीपल, इन बड़ों का ख्याल, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना कितना ज़रूरी होता है। तो एक कहानी के ज़रिए हम यानी इस बारे में बातचीत करेंगे, ये तो हम सबको मालूम है।

जाके साथ साथ हमारी कहानी भी चल रही है गीतों के साथ साथ। तो चलिए हमारी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे हम हामिद साहब और इमरान की। एक दिन हामिद साहब ने इमरान से कहा कि बेटा, डॉक्टर को दिखाना चाहता हूँ मैं, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं लग रही। तब इमरान ने मोबाइल से नज़रें हटाए बगैर कहा, अबू आज बहुत मसरूफ़ हूँ, कल चलेंगे? कल अगले

आहिस्ता से कहा, वक्त भी कितना अजीब होता है ना, ये गुजर जाता है, अपने साथ कई यादें छोड़ जाता है। वो यही सोचने लगे कि यानी किस तरीके से हम बच्चों का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है तब उन्हें हमारा ख्याल तक नहीं आता। अगले दिन जब इमरान की बेटी मरियम स्कूल से वापस आती है, वो अपने दादा के पास बैठ जाती है और कहती है कि दादा जान, आप आज इतने खामोश क्यों हैं? हामिद साहब तब मुस्कुराकर कहते हैं, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा थक सा गया हूँ। मरियम उनका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि दादा जान, आपने दवा ली? तब वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैंने नहीं ली। तब मरियम फौरी पूछती है कि क्यों नहीं ली? तब वो कहते हैं कि दवा ख़त्म हो गई है बेटा। मरियम फौरन उनका हाथ पकड़ती है और उठ खड़ी होती है। मैं अबू से कहती हूँ कि कहूँगी ज़रूर कि वो आपकी दवाई ले आए। और तब ये सुनकर वो बच्ची से कहते हैं कि नहीं बेटा, अपने अबू को परेशान न करना। तब मरियम हैरत से पूछती है कि दादा जान, आप हमेशा अबू की फिक्र क्यों करते हैं? अबू को भी तो आपकी फिक्र करनी चाहिए ना। ये बात बच्ची के मुंह से ये बात सुनकर हामिद साहब खामोश हो जाते हैं।

सामाइन गीत सुरीले गाते जब प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं, तब हमने सुना कि किस तरीके से मरियम ने अपने दादा जान की कैफियत ली और दादा जान से ये सब कहा। उसकी बातें सुनकर हमेशा बहुत खामोश हो गए। ये एक छोटी सी बच्ची का सवाल था, मगर इस सवाल में जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत छुपी हुई थी। उसी शाम मरियम ने अपने वालिद से कहा, अबू, दादा जान की दवा खत्म हो गई है। इमरान ने जवाब दिया कि अच्छा, कल ले आऊंगा। मरियम ने फौरन कहा, नहीं अब्बू, आज ही ले आइए। इमरान ने हैरत से बेटी की तरफ देखा, तुम्हें क्या हुआ है बेटी? तब इमरान ने कहा कि बेटी, बाया ने बहुत ही मैं तो तुम्हें यानी हमेशा से कहता हूँ कि दादा जान है, दादा जान का ख्याल रखना चाहिए और मैं भी उनकी दवाई ले आऊँगा, तो तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तब वो कहती है कि नहीं नहीं अबू, मैंने देखा है कि दादा जान को दवाई की फौरी ज़रूरत है और आप दवाई ले आइए।

0: दीवानो मुझे पहचानो जरा पहचानो मैं हूँ डॉन।
1: अपनी बेटी की बातें सुनकर इमरान को यानी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे झिंझोड़ दिया है और उसी रात वो अपने अब्बू के पास जाता है, उनके पास बैठता है, उनसे बातें करता है और दूसरे दिन सुबह ही वो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाता है और अच्छे से उनका इलाज कराता है और वो यानी जो उनको तकलीफ़ थी, चलने फिरने में तकलीफ़ होनी थी, शदीद दर्द था उन्हें घुटनों में, वो सब कम होने के बाद वो बहुत खुश होते हैं कि मेरे बेटे ने मेरा इतना ख्याल किया है। और यानी वो कहते हैं कि बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, मुझे वक्त दो, मुझसे बातें करो। ये उम्र में सब वालिदैन यानी बड़े बुज़ुर्ग यही चाहते हैं कि हम उन्हें नई औलाद हो चाहे पोता पोती हो, सब उन्हें कुछ वक्त दें, उनकी बातें सुनें, क्योंकि न्यू जनरेशन के पास वक्त नहीं होता, वो सब अपने अपने कामों में बिज़ी होते हैं, अपनी मसरूफियत के बस वो वक्त नहीं दे पाते। लेकिन अगर वक्त दें तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग बहुत खुश हो जाते हैं। और तब हामिद साहब ने ये बात कही तो इमरान को भी समझ आ गई और वो यानी उसने एक अपना टाइम टेबल बना लिया कि रोज़ एक घंटा ऑफिस से आने के बाद वो वक्त अपना अपने अब्बू के साथ गुजारेगा। और यानी मरियम और उसके भाई को तो ये बात अच्छे से पता थी, वो तो अपने दादाजी के साथ वक्त गुजारते ही थे। तो जब ये सब शुरू हुआ तो माहौल बहुत खुशगवार हो गया और हंसी खुशी यानी सब ने हंसी खुशी रहना शुरू किया वहाँ पर, वो घर में फिर से रौनकें लौट आई। तो इसी तरीके से जब हम बड़े बुज़ुर्गों का ख्याल रखते हैं तो वो जब खुश होते हैं तो घर में रौनकें फिर से लौट आती।

गीत सुरीले गाता जा प्रोग्राम अभी आप सुन रहे थे। रोज इसी वक्त यानी रात 9:30 बजे आप उर्दू प्रोग्राम नैरंग में सुन सकते हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा। अब वक्त हमसे कह रहा है कि आपसे इजाजत लें, तो चलते चलते हम आपको सुना दें प्रोग्राम पयामे शब। पेशकश है नदीम अख्तर जैदी की।

0: जो चिराग सारे बुझा चुके उन्हें इंतजार कहाँ रहा, जो चिराग सारे बुझा चुके उन्हें इंतजार कहाँ रहा। ये सुकून का दौर शदीद है, कोई बेकरार कहाँ रहा। इंसान को अपनी जिंदगी में उम्मीद के चिराग कभी बुझने नहीं देने चाहिए। जब दिल से उम्मीद, शौक और मकसद खत्म हो जाए तो फिर किसी बेहतर कल का इंतजार भी बाकी नहीं रहता। हकीकी जिंदगी वही है जिसमें इंसान मुसलसिल बेहतरी की जस्तजू, नेकी की तलब और अपने ख्वाबों की तकमील के लिए बेकरार रहे। जो लोग अपनी बेकरारी, जज्बे और उम्मीद को जिंदा रखते हैं वही जिंदगी के सफर में आगे बढ़ते हैं। उम्मीद का चिराग हमेशा रोशन रखें। मकसद के बगैर जिंदगी सुकून नहीं जमूद बन जाती है। बेकरारी अगर नेक मकसद के लिए हो तो कामयाबी का पहला जीना है। मायूसी इंसान को अंदर से खामोश कर देती है जबकि उम्मीद उसे जिंदा रखती है। जिंदा दिल वही है जिसके दिल में उम्मीद का चिराग रोशन हो, क्योंकि जिसके ख्वाब बुझ जाए उसकी राहों से इंतजार भी रुखसत हो जाता है।
1: नदीम अख्तर जैदी से पयाम शब अभी आप सुन रहे थे। इसी शब के पयाम के साथ हमारा आज का प्रोग्राम नए रंग खत्म करने की नूरफशां को दीजिए इजाजत। कल हम आपसे इन्हीं मीटर्स पर यानी 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर उर्दू प्रोग्राम नए रंग लिए दोबारा हाजिर होंगे। शब बख़ैर।

0: इस वक्त रात के 11 बजने ही वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार दिल्ली से प्रसारित होंगे।
1: अभी जून के रेनबो चैनल पर अब वक्त है मुख्य समाचारों का। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। विधेयक में राष्ट्रीय न्याय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा गया। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक

0: बनाने वाली राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा है कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन के कारण सड़कें और राजमार्ग बाधित होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल बस असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है।
1: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है. स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन. पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
2: धन्यवाद निखिल.
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर.
0: थैंक यू निखिल एंड पुनीत, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम. अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स. बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज फॉल नियरली 0.5%. सेंसेक्स ड्रॉप्स अराउंड 400 पॉइंट्स. निफ्टी सेटल्स बिलो 24,500. Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB with a stable outlook, says country's economy remains strong despite headwinds. And stocks to be replaced in NSE indices, changes to take effect on 30th of September this year.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट. सेंसेक्स 400 अंकों के आसपास नीचे आया. निफ्टी 24,400 से नीचे पहुंचा. वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी. कहा यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है. और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कई सूचकांकों में स्टॉक बदलने की घोषणा की. बदलाव इस वर्ष 30 सितंबर से लागू होंगे.
0: Before we move into the program, we'd like to share with you listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए. सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया. भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुख्य सूचकांक गिरावट के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 388 points to close at 78,154. The Nifty lost 112 points to settle at 24,472. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index ended on a flat note, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. The benchmark indices opened on a negative note and remained range-bound throughout the session following a rise in oil prices amid lingering geopolitical uncertainties.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में सुस्ती देखी गई. सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.7% से ज्यादा, एक्सिस बैंक और इंडिगो में 1.5% और भारतीय एयरटेल में 1.4% से अधिक की गिरावट आई. वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 2%, इन्फोसिस में लगभग 0.5% और टाइटन में 0.3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई.
0: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, hospitals dipped 1.8%, realty shed 1%, and FMCG lost 0.9%. In contrast, focused IT climbed more than 0.4%. IT rose almost 0.4%, and healthcare added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 2,279 companies declined, 2,033 advanced, and 198 remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ. पुनीत, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आज जो मार्केट में हमने गिरावट देखी, उसके पीछे कौन से मुख्य कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही कि गिरावट देखने को मिली, और खासतौर पर ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह थोड़ी सी तेजी भी देखी गई थी.
2: निखिल, आज मजे की बात यह है कि हम, हालांकि आपने कहा कि बाजारों में गिरावट देखी और इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी कुछ नेगेटिव है, काफी कंपनीज में गिरावट थी, लेकिन

0: आप देखें तो जो लार्ज कैप है, जो ज्यादातर जो गिरावट बाजार में देखी गई वो लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी हेडलाइन जो नंबर्स होते, जब बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो शेयरों में, वहां हमने गिरावट देखी। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, जब आपने बताया कि इंडेक्स में भी वहां पर गिरावट नहीं थी, स्मॉल कैप में तो थोड़ा हल्की बढ़त थी।
1: जी
0: तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो FIIs हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं, उनकी बहुत खरीदारी अभी बाजार में नहीं है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है। FIIs का रुख बड़ा मिला जुला है, वो किसी दिन, अब आप देखेंगे कि पहले तो वो लगातार सेलिंग कर रहे थे कई महीनों तक, अब हम देख रहे हैं कि जो अगस्त का महीना गया है कि उसमें कुछ मिक्स्ड ट्रेंड है। जुलाई और अगस्त में कभी एक दिन वो खरीदारी करते हैं, एक दिन वो बिकवाली करते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स जो शेयर्स हैं, जहाँ जो इंडेक्स में वेटेज है इनका ज़्यादा, वहाँ पर हमने आज सेलिंग देखी थी, इसलिए वहाँ पर गिरावट थी। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आज भी काफ़ी स्टेबिलिटी थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा तेजी थी, पर स्टेबल थे। तो बाजार को इस वक्त हम काफ़ी, मतलब आप कह सकते हैं मिला जुला रुख है बाजार के अंदर। सीधा हम ये नहीं कह सकते बाजार में कमजोरी है या बाजार में तेजी है, इसलिए ये मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वी नीड टू लुक एट इट डिफरेंटली।
1: तो इसमें मुनाफा वसूली भी एक कारण माना जा सकता है इसके लिए।
0: देखिए, मुनाफा वसूली बहुत ज़्यादा नहीं है इस वक्त, बल्कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, जैसे IT क्षेत्र था, वहाँ पर थोड़ी सी हमने कमजोरी देखी थी, वहाँ रिबाउंड हुआ है, तो कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं ये कहूँगा कि चर्निंग हो रही है, जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स थे वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और अंडर वैल्यूड सेक्टर्स में, यानी IT जैसे क्षेत्र में और बैंकिंग में, वहाँ पर थोड़ी बाइंग हो रही है।
2: Puneet, so you would agree that, you know, and I remember this conversation earlier also with you before we moved into the studio. That means there's a broad-based movements are not, there are no broad-based trends, but stock specific. So
0: Absolutely.
2: Without mentioning stocks, just give us an idea about this, please.
0: So you're right. I mean, so what we are observing is that while there is no broad-based trend, no, we can't say that the market is moving up or moving down either way. There are pockets of strength within the market. So you will find that there are pockets of strength in a particular sector. For example, we haven't seen IT sector rebounding lately. You know, last couple of weeks, we have seen a
2: Right.
0: big 15-20% move in IT sector stocks because they're really beaten down. So some money may have moved from other sectors which there were profits to be taken. So that money may have moved to IT sector stocks. Similarly, within the mid cap and small cap space, we find stocks which have done very well actually. And a lot of retail investors, mutual funds, they are attracted to mid cap and small cap companies because the growth that we have seen in the numbers that we saw for the last quarter, that has been very good for small and mid cap companies. So a lot of money has actually rotated out of large caps into mid caps and small caps.
2: Right. So when we look at, you know, earlier when we spoke about IT shares and AI shares, I mean, let's go back 6 to 8 months. We always saw that, you know, IT shares were being beaten down and AI shares were really coming up and all. But we also know that while the movement has been in different directions, IT and AI are very closely interlinked because success of AI and success of IT are strongly interdependent. Your views on this?
0: So, Gaurav, what happened was very interesting. In fact, in India, and see, India largely has these IT services companies. We do not have pure play AI companies or large AI players in India. Of course, there is one AI, which is the companies are doing the software business, the development part. There was another set of players in AI, which was chip makers.
2: Right.
0: So we saw that the money went from IT services companies, they actually went into AI model developers, or it went into AI stocks, which is basically we saw Korea, Japan, Taiwan, countries like these, which have very large chip makers listed there. They attract a lot of capital. So, and again, in the last two, three, so there was a huge run-up in these stocks, in these companies. And then last couple of weeks, we saw a very big churn away from these companies again and back to Indian IT that we saw. So clearly, these are not markets where there's a long-term trend. You see hot money moving into one sector quickly, then there's a profit booking, it moves to another sector. So that is the kind of market which is there right now.
2: Hot money, but be careful to touch it, right?
0: Absolutely. So this is really meant for people who are more into no speculative set of rules of the game.
2: Right.
0: But for long-term investors, it's difficult.
1: पुनीत, बैंकिंग, एविएशन और सीमेंट जैसे जो सेक्टर्स हैं, तरह तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। एक मतलब एक सीधी लाइन कहीं नजर नहीं आ रही है, उसमें अप्स एंड डाउन हमें नजर आ रहे हैं, उथल पुथल भी एक दो बार देखने को मिली है। लेकिन मैं आपका ध्यान हॉस्पिटल सेक्टर की ओर थोड़ा सा ले जाना चाहता हूँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, आज हॉस्पिटल के शेयर्स, वैसे नॉर्मली ये हॉस्पिटल सेक्टर को हम डिफेंसिव सेक्टर मानते हैं। कारण ये है कि ऐसा लगता है कि ये बिजनेस जो है

0: roughly 5 to 6 lakh crore rupees is invested in Nifty 50 itself through the mutual fund route and through the ETF route. Now, that money gets churned as a result of this rebalance. So it's a very significant exercise. But it happens twice a year. So every 6 months it is done. And largely we don't see very big changes in the index in Nifty 50. It's rare that we see a stock being excluded and another being included. Which
1: the
0: is
1: weightage
0: happening.
1: Is changed.
0: The weightage is changed mostly. But this time, of course, we're going to see. So whichever stock is excluded sees a lot of selling pressure. And whichever stock is included will see a lot of buying push in that stock.
1: Right. So quickly, your comment on the MSCI rejig is due tomorrow.
0: That's right. So MSCI again is a... See, so what we are doing with the domestic indices in terms of mutual funds, the Morgan Stanley, so this is called Morgan Stanley Composite Index. So worldwide, Morgan Stanley is considered to be the most credible, most reliable source for allocating or creating these indices. And a lot of international funds, they allocate their funds in line with the MSCI index. For example, if MSCI increases India weightage in the index, we will see money coming into India from FIIs. FIIs will be literally forced to buy into India because they benchmark their mutual funds to MSCI. So it's the same thing. This is part of the passive investing trend that we see worldwide.
1: Right.
2: वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है. एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है. फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है. फिच रेटिंग्स ने कहा कि देश में व्यापक आर्थिक स्थिरता संतुलित है और नीतिगत विश्वसनीयता में सुधार जारी है, जो आगे भी प्रगति का आधार बनेगा. एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी. फिच ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति लचीली रही है, लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कुछ जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि भारत ऊर्जा का एक बड़ा आयातक है. फिच ने यह भी कहा कि ऊर्जा संकट के कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि भारत में महंगाई रिजर्व बैंक के अनुमानित 2-6% की सीमा के भीतर रहेगी. पुनीत, मेरे दो प्रश्न हैं इस खबर को लेकर के. पहला तो ये कि एक ऐसा स्टेटमेंट आना कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर बनी हुई है, इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो पॉलिसीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट है. दूसरा सवाल ये कि फिच ने जब ये बोला है कि अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी, कहीं ना कहीं ये मार्केट को स्टेबिलिटी देने का प्रयास करने की बात जैसा है. और दूसरा ये भी कि इकोनॉमिक वैल्यू को अगर हम समझें तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे.
0: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिच की जो सॉवरेन रेटिंग होती है, जो फिच ने जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग BBB रखी है, ये एक और स्टेबल है, क्योंकि पहले भी BBB थी. हम ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि अब BBB से अगला जो कदम है वो ए रेटिंग जो होती है, अगर वो आती है तो इसका देखिए असर पड़ता है भारत की किस रेट पर हम पैसा भारत रेज कर सकता है. ये क्रेडिट रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ देश के लिए, क्योंकि भारत तो ऐसा कोई फॉरेन बोरोइंग नहीं करता है, लेकिन जो हमारी देशी कंपनियां हैं इस रेटिंग के बेसिस पे उनको क्रेडिट रेटिंग मिलती है और उससे आगे वो पैसा रेज कर सकते हैं. तो एक काफ़ी बड़ा असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भारतीय कंपनियों के लिए. दूसरा यह है कि जो भारत में अभी कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा डालते हैं, तो इस रेटिंग से उस पर प्रभाव पड़ता है. अगर फिच ये कहता है कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है या ग्रोथ है वो स्टेबल है और अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर. तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए क्रेडिट रेटिंग का बने रहना. तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस पे बेहतर थोड़ी से बेहतर करेंगे. एंड इफ वी गो इनटू द इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट BBB इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इससे अगर बेहतर होता है भारत को काफी फायदा हो सकता है.
2: जून में देश में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,973 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो जुलाई में 14.8% घटकर 24,697 करोड़ रुपए रह गया. एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में 31,961 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो जून के मुकाबले अधिक है. इक्विटी फंड श्रेणी के लिए जुलाई में स्मॉल कैप फंड्स में सबसे अधिक 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ. इसके बाद मिड कैप फंड्स, फ्लैक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स ने कारोबार किया. हालांकि इस दौरान लार्ज कैप और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम फंड्स से निकासी देखी गई. पिछले महीने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश घटकर 1,559 करोड़ रुपए रह गया. वहीं डेट फंड्स में

0: उल्टा हो गया। पिछले महीने इनमें 1,87,511 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। डेट ओरिएंटेड स्कीमों में लिक्विडिटी फंड्स में सबसे अधिक 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पुनीत, अभी जुलाई के महीने में जितना हमने इन्वेस्टमेंट देखा, जून के महीने में जितना देखा, जुलाई में घट करके वो काफी कम रह गए, इसके पीछे क्या कारण रहे?
1: देखिए, ये आप अगर देखें तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि लार्ज कैप्स का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कम हुआ है पिछले दिनों। और इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादातर वो अब मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो उस ये डेटा उसको पुष्ट करता है, उसको दिखाता है कि हमारा आंकलन जो है वो सही है। और देखिए, जो SIPs हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें काफ़ी उसमें से पैसा लार्ज कैप में भी जाता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जरिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा एक दर्शाता है कि जो रिस्क एपिटाइट है इन्वेस्टर्स की, वो थोड़ी बढ़ रही है। और कुछ हद तक जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, उसकी वजह से ये डेटा अफेक्ट हो रहा है। आने वाले समय मेरी उम्मीद है कि जो 2 या 3 महीने कंसोलिडेशन का जो समय है मार्केट्स के लिए, ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पर प्रदर्शन बेहतर होगा। और मार्केट्स, मुझे लगता है कि ये बता रहा है हमें कि मीडियम टर्म में थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है।
0: और SIP के बढ़ने का क्या कारण मानते हैं आप?
1: देखिए, SIP फॉर्चुनेटली एक बहुत ही स्टेबल एक तरीका है मार्केट में पैसे डालने का। जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो रोज़मर्रा में मार्केट्स को नहीं देखते हैं, तो ये SIP की वजह से हमारे भारतीय बाजारों में काफ़ी स्थिरता आपने देखेंगे, स्टेबिलिटी है। और जो FIIs का इतनी सेलिंग हमने एब्जॉर्ब करी है, वो भी कुछ हद तक उसका श्रेय जो है वो SIPs को जाता है। तो ये एक स्टेबल ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी आने वाला है, और थोड़ा बेहतर ही होगा आने वाले समय में।
2: And a quick comment on the increase in debt funds.
1: So Gauram, what happens is that whenever money, so debt fund is purely parking of money by corporates.
2: Reflection of the volatility.
1: And if people are avoiding large caps in the time being, then they will park money for short term in debt funds. But debt fund flows are very, very volatile. So this month you may have seen 1 lakh crore inflow. Next month you might see 1 lakh crore outflow. Okay. This is a typically short term money. This is not really long term invested in the Indian debt markets.
2: So wait and watch is a lot. What a lot of retail investors and investors
1: Absolutely.
2: Are doing.
1: And retail investors are tilting towards higher risk, which is basically mid caps and small caps.
2: Right. Moving on to our next story, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has informed that the progress of area coverage under Kharif crops has recorded more than 967 lakh hectare area as of the 7th of this month. Meanwhile, the government has said that it is continuously monitoring the evolving monsoon situation and the possible impact of El Nino conditions on agriculture in close coordination with the India Met Department. The Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Mr. Ramnath Thakur, said this in a written reply to a question in the Lok Sabha today. He informed that district agriculture contingency plans have been updated for 15 states covering 342 districts which are likely to receive below normal rainfall. Quickly again, Puneet, so fears of actually the monsoon completely skewing up production, that somewhat receded?
1: Yeah, that is really receded a lot, and I think it's a big relief for the economy.
2: Absolutely. The Reserve Bank of India governor has called on Indian banks to adopt artificial intelligence with a clear focus on innovation, accountability and customer trust. Addressing the 2026 edition of Back on Mumbai, the RBI governor said AI could transform Indian banking by improving credit delivery, customer service, financial inclusion, operational efficiency and fraud detection.
0: एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। पुनीत, अभी कुछ समय पहले हम लोग AI के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड मार्केट की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया का मार्केट बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, लेकिन अभी जो मौजूदा आर्थिक अस्थिरता की हम बात करें, स्थिरता तो नहीं कहना चाहिए, उसका असर लग रहा है कि आपको एशियन मार्केट्स में ज़्यादा पड़ रहा है?
1: देखिए, एशियन मार्केट्स में काफ़ी वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा थी और बहुत हमने तेज़ियाँ देखी, फिर बहुत बड़ी करेक्शन मार्केट्स में देखी। मुझे लगता है अब कुछ जो एक इनिशियल एक अफरा तफरी थी वो कुछ कम होगी और बाजार अब यहाँ पर कंसोलिडेशन होकर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर शायद चलेंगे, वो अच्छा भी है मतदानों के लिए।
0: और चिप सेक्टर से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं?
1: देखिए, चिप सेक्टर अच्छा सेक्टर है, लेकिन वहाँ वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी, तो हमने देखा है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ हद तक वो पैसा रोटेट होकर इंडियन मार्केट्स की तरफ आया है।
2: So now are world markets moving more on domestic issues or domestic this thing or geopolitical still?
1: So there is no longer this global trend in the markets now. We see the US markets move in a different direction. So right now they're kind of disconnected with each other. It happens in

0: in. So countries realigning their oil policies and all, even for the long term in the future, even if the Middle East thing gets sorted out. But they're saying, you know, we really can't be so dependent again. You think that's going to happen?
1: Absolutely. I think the oil trade is being rewritten all over. And I think next 10 years, we'll see the oil markets being very different from what they are today. So it's a good thing. It's probably a geopolitical commodity right now. But going forward, I think this will be de-risked to a large extent. And the dominance of the Middle East in the oil trade, I think that will decline over the next 10 years.
2: Puneet, if we talk about the oil sector, then we've seen the prices of kacche tel ki keematon एक चिंता का माहौल देखा गया है पिछले कुछ समय में. भारत के नजरिए से अगर देखें, खासतौर पे ऐसी स्थिति में हम तेल को बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसी स्थितियां बन सकती हैं हमारे लिए?
1: देखिए निखिल, अभी जो हमें कंपनी जगत के नतीजे आए हमारे सामने, ये बात साफ है कि कॉस्ट प्रेशर्स इस तिमाही में बहुत ज़्यादा थे और कंपनीज के मार्जिन्स पे भी असर पड़ा उसका. तो भारतीय इकोनॉमी जो है वो बहुत सेंसिटिव है और एनर्जी प्राइसेस को, क्योंकि लार्जली बिकॉज हम 80-90% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं अपनी, तो उसका असर भारतीय कंपनियों पर, हमारी इकोनॉमी पे बहुत गहरा पड़ता है. अभी तक सरकार ने उसको अच्छा मैनेज किया है, पर मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म डीरिस्किंग पॉलिसी ज़रूर भारत को चाहिए होगी. हम इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर या अनसर्टिनिटी के ऊपर. तो मुझे मेरा अपना अनुमान यह है कि वो पॉलिसीज भी आएंगी, भारत अपने भी एनर्जी व्यापार को बढ़ाएगा. तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है हमारे लिए.
2: इस पे यूएस मार्केट का कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्या इंपैक्ट डाल रहा है?
1: देखिए एनर्जी प्राइसेस जो है उससे यूएस मार्केट्स पर तो देखिए फर्क पड़ ही रहा है, बिकॉज वहां पर जो पॉलिसी है उसको सीधा सीधा वो असर डालती है. वहां पर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंपैक्ट पड़ेगा. पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट ने काफी हद तक इसको दरकिनार करके और ज्यादातर एआई ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रेड पर ध्यान दिया है और वहां पर उसका असर ज्यादा है.
2: जी, अब गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं. सोना 1.4% की बढ़त के साथ 1,52,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं चांदी 1.7% की तेजी के साथ 2,35,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कॉमेंट्स होंगे? पिछले कुछ दिनों में एक ऊपर चढ़ने का सिलसिला हम देख रहे हैं.
1: देखिए जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स उसका सीधा असर अगर आप देखें तो ऑयल, डॉलर और सोना चांदी जो इसका जो वो बना हुआ है
2: कॉम्बिनेशन
1: बना हुआ है. और जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना हुई, तो वहां पर गोल्ड के दाम पड़े.
2: जी पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: धन्यवाद निखिल.
0: एब्सोल्युटली, थैंक यू पुनीत, वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम. एंड नाउ लुक एट द हेडलाइंस वंस अगेन. Benchmark domestic indices fall by nearly 0.5%. Sensex drops around 400 points. Nifty settles below 24,500. Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook. Says country's economy remains strong despite headwinds. And stocks to be replaced in NSE indices. Changes to take effect on 30th of September this year. That's all for today. Namaskar.
2: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

गीत मेरे मनमीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से। ये 11:41 और 4 सेकंड हो चुके हैं। तो गीत मेरे मनमीत की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज के साथ। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है आक्रमण।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: ग्यारह बजकर 56 मिनट और 27 सेकंड हो चुके हैं। गीत मेरे मनमीत में अब जो आप गीत सुनेंगे वो मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत पद है, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। और इसी गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए

0: लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार की कई संस्थाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में 8 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुदान के तौर पर मदद मिलेगी। लगभग 80 करोड़ 30 लाख नेपाली रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के जरिए पूरा किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण ने पान मसाला पैकिंग में प्लास्टिक, सिंथेटिक सामग्री और एल्युमिनियम फॉयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा। तुम मिले तो जिंदगी में नूर आ गया, तुम मिले तो जिंदगी में नूर आ गया, धड़कनों को जीने का जैसे सुरूर आ गया।

पूरी दुनिया को भुलाकर हम तुम्हें ही अपनी दुनिया बना बैठे, पूरी दुनिया को भुलाकर हम तुम्हें ही अपनी दुनिया बना बैठे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएं हम।

कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहूंगी आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता, सुधार और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल

0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
1: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से कल नई दिल्ली में केरल के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्री जोसेफ से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की गति और तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने और पानी की सतह पर तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य की क्षमता का लाभ उठाने पर जोर दिया। फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 135वें डूरन कप के अपने आखिरी मैच में FC1 को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप ई के मैच में नोंकसेह SSCC ने मुंबई फुटबॉल क्लब पर 7-0 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service, of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said that the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of the Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home, Nityanand Rai, said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for the amendment in this regard. The lower house has also passed

दोस्तों, समय हुआ है 1:11 और 2 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अल्फाज के साथ। लोग ढूंढते हैं मोहब्बत को किताबों में, लोग ढूंढते हैं मोहब्बत को किताबों में, हमने तो तुम्हें अपनी हर सांस में बहुत गहराई से बसाया है।

तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। बस इतना समझ लो कि तुमसे प्यार बहुत है और कोई बात नहीं।

न जाने मुझे तुमसे इतना प्यार क्यों है, तुम्हारी हर बात पर इतना एतबार क्यों है। तुम पास नहीं हो फिर भी पास लगते हो, इस दिल को बस तुम्हारा इंतजार ही क्यों है।

न चेहरा देखा न सादगी देखी तुम्हारी, न चेहरा देखा न सादगी देखी तुम्हारी, बस रूह से रूह तक की डोर बंद गई हमारी। न जाने क्यों तुम अपने लगते हो मुझे, न जाने क्यों तुम इतने अपने लगते हो मुझे कि तुम पर वार थी ये जिंदगी सारी।

सारी सारी रात जागते हैं बस हम इसी आस में, सारी सारी रात जागते हैं हम बस इसी आस में, शायद कोई ख्वाब बनकर तुम आओ मेरे पास में।

तुम मिले तो मिल गई इस दिल को उसकी मंजिल, तुम मिले तो मिल गई इस दिल को उसकी मंजिल, अब उम्र भर का साथ ही है हमारी चाहत का हासिल।

मेरी तन्हाई की रातों को तुमने रोशन कर दिया, मेरी तन्हाई की रातों को तुमने रोशन कर दिया, भीरा पड़े इस दिल को मोहब्बत से भर दिया। भटक रहे थे हम अंधेरों के मुसाफिर बनकर, तुमने आकर मेरी जिंदगी को एक नया सवेरा कर दिया।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी

0: अनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में उसके सैनिकों ने पनामा के झंडे वाले एक जहाज पर गोलीबारी की। ये जहाज ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी से बचने की कोशिश कर रहा था। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी मध्य कमान ने कहा कि जहाज ने रुकने के लिए दी गई कई चेतावनियों को नजरअंदाज किया, जिसके बाद एक अमेरिकी हेलीकॉप्टर ने MV वेला नोवा के इंजन रूम में मिसाइलें दागी और जहाज को नष्ट कर दिया। इस समय अमेरिकी नौसेना के अरब सागर क्षेत्र में 15 से ज्यादा युद्ध पोत तैनात हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर भी ऐसी ही स्थिति रहने की आशंका है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में अमेरिका के ब्रैंडन नकाशिमा ने इटली के लुसियानो डार्डेरी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी ईगा स्वियातेक ने कनाडा ओपन 2026 के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to a discussion on the bill, Mr. Meghwal said that the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the Constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The Lower House has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills are passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that

समय हुआ है 2:11 और 12 सेकंड। ये समय है रात सुरमई का। मैं हूँ अंजु, एक बार फिर से आप सभी के साथ, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है भला? तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है भला? मेरी तो हर एक दुआ में सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र शामिल होता है।

छुपाए नहीं छुपती चेहरे की ये हसीन चमक, छुपाए नहीं छुपती चेहरे की ये हसीन चमक, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुम्हें, झूठ मत बोलो क्योंकि रूह तक पहुंच गई है ये महक।

मेरी बातों पर तुम्हारा इस कदर मुस्कुराना साफ कहता है कि मुश्किल है अब दिल को बचाना।

मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये जो असर है तुम पर, मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये जो असर है तुम पर, मानो या ना मानो कुछ तो तुम्हें भी होता होगा जिक्र आने पर।

इनका मिलना इन पर छोड़िए, लेकिन हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और थोड़ी देर बाद यानी 3:10 पर अर्जित रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। अभी सुनिए आप समाचार और मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे। नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले कल लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, बल्कि दुनिया

मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। मीर यार बलूच ने दावा किया कि 50,000 से अधिक बलूच अभी भी पाकिस्तान की यातना कोठरियों में अमानवीय अत्याचार झेल रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, OIC और यूरोप के सदस्य देशों से चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के चौरा मैदान में लगभग 50 तिब्बती पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। वे तिब्बत के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और तिब्बती भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ शिमला द्वारा आयोजित ये विरोध प्रदर्शन कल शाम 4 बजे शुरू हुआ और आज शाम 4 बजे खत्म होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह भूख हड़ताल लोबसांग रंग जेन की याद में की जा रही है। आयोजकों के अनुसार उन्होंने चीन की सरकार की नीतियों के विरोध में 2 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह कर लिया था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल ईगा स्वियातेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वीं सीड एलिना स्वितोलिना से होगा। पूर्व विश्व नंबर एक खिलाड़ी स्वियातेक 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2, 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्वितोलिना ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे। 3:11 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। 3:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी की आवाज में, जिसका मुझे था इंतजार। आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर आदतें कभी नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तो फिर ये जिंदगी नहीं बचती। 3:29 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

इस कदर हम थे तन्हा, इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:37 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

भटक न जाओ कहीं, अब इस डर से बाहर ही नहीं निकलते हो। लोग क्या सोचेंगे, अब ये भी तुम ही सोचते हो। जितना जंजीरों में बांधोगे खुद को, उतना ही खुद से दूर हो जाओगे। इतनी सी बात भी क्या तुम नहीं समझते हो? बेशक समझदार होना अच्छी बात है, बेशक समझदार होना अच्छी बात है, पर हर दम समझदारी का बोझ अपने ही सर क्यों रखते हो? निकलो भटको, घूम कर आओ थोड़ा। निकलो भटको, घूम कर आओ थोड़ा। हर समय बिना बात के इतना क्यों डरते हो? 3:44 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: प्यार करने से पहले जरूरी है ये मैं तुझे जान लूं और तू मुझे जान ले।
1: जाओ जाओ
0: प्यार।

नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फ़ासले भी रखें, नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फ़ासले भी रखें, हर रिश्ते में नज़दीकियों और फ़ासलों का सामंजस्य बनाए भी रखें, पर जब भी कभी दिखें लड़ने के आसार, पर जब भी कभी भी दिखें लड़ने के आसार, कृपया उचित दूरी बनाए भी रखें। 3:51 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मिले पैसों को बुनियादी परियोजनाओं में खर्च किया गया। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ सकती है और साथ ही आपदा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं।

कोलंबिया में आए भूकंप में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस सदी में कोलंबिया में आया सबसे विनाशकारी भूकंप था। पश्चिमी कोलंबिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बचाव दल मलबे के ढेर के बीच काम कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जिससे कि वो उन लोगों की आवाज़ सुन सकें जो इमारतों के नीचे दबे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कोशिश यही कीजिए कि कोई बिना बात के आपसे नाराज़ ना हो। कोशिश करिए कि बिना बात के कोई आपसे नाराज़ ना हो। रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हो। हो जाए कोई नाराज़ तो उसे ज़रूर मनाइए। हो जाए कोई नाराज़ तो उसे ज़रूर मनाइए। पर कभी आप हो नाराज़ तो उसे भी इस बात का एहसास ज़रूर हो। 4:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एक बार फिर से अलचेत। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: उदित नारायण जी की आवाज में अभी अभी आपने सुना तेरा मेरा मेरा तेरा सपना है। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:20 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: बरसों बाद ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: दरअसल ये बेले नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुवारे
1: कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर हर समय गमों की चर्चा क्यों करते हो? हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर हर समय गमों की चर्चा क्यों करते हो? बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो? परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों लगते हो? 4:28 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।

छोड़िए अब बेचैनियाँ सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। छोड़िए बेचैनियाँ सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़िए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से रहिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी। मेरी इन बातों का थोड़ा ख्याल भी रखिए। पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा, पहुँच ही जाएंगे जहाँ पहुँचना होगा। दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए। 4:35 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कोशिशें तो इस कदर की मैंने कि कोशिश ने खुद मुझसे आकर कहा कि मुझसे अब और कोशिश ना हो पाएगी। सभी ने मुझसे कहा रहने दो अब और कोशिशें, तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ ही जाएगी। मैंने भी हार ना मानी, ना हुआ ज़्यादा बेकरार, करता रहा कोशिशें यूं ही बार बार। और फिर दिखने लगा असर, होने लगा विश्वास, तब पता चला हर कोशिश में छिपा था मेरी सफलता का राज। 4:46 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीपीवी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर की कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मिले पैसों को बुनियादी परियोजनाओं में खर्च किया गया है। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ सकती है, साथ ही आपदा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है, फिर भी वो एक बार आसमान को छूना चाहती है। इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, बस समस्या यहाँ पर है कि इंसान अपनी ज़मीन को भूलकर हमेशा ही हवा में रहना चाहता है। 5:11 हो चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम जिसका नाम है भोर सुहानी, और एक बार फिर से मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, थोड़ा इंसान के अंदर भी झांक लीजिए। बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बुनियाद कितनी मजबूत है पहले वो पता कीजिए। दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है। सिर्फ सुंदर चेहरों पर जल्दी विश्वास ना कीजिए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए। सिर्फ दिखावे के लिए अब दोस्ती ना करिए। 5:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत

0: पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।